0: औषधि चोकर बिसारी बिउ बिजन मल खाता कृषि औजार समेत उपलब्ध छ।
1: हाम्रो गाई भैँसी बिरामी भयो

बीसों प्रभाव कारी काम अगाड़ी बढ़ने सकते समय धारण रखना है अगाड़ी का मुख्यमंत्री मंगल बहादुर साई के संगीता दारी फैलने का भ्रम चीन उपलब्धि तथ्य का आधार में स्थापित करागवती का मुख्यमंत्री किरण थापा मगर ने जिम्मेवारी फरक फरक भाई सभी प्रदेश को उद्देश्य संहिता बलियो बढ़ाने भाई इसलिए सबसे साझा धारणा बनाकर अगाड़ी बढ़ने पड़े सम्मेलन आज समय सभी सम्मेलन में छ प्रदेश का मुख्यमंत्री साथ ही प्रदेश सचिव योजना आयोग का उपाध्यक्ष प्रदेश न्यायाधीश वक्ता लगायत का सहभागी सम्मेलन ने सभी प्रदेश का साझा समस्या पहचान करें कानूनी तथा प्रशासनिक अवरोध

0: हमारे जानकारी बिना राष्ट्रीय महिला आयोग को हेल्पलाइन नंबर 1145 में संपर्क गर्नुहोस्।
1: बाल संरक्षण तथा सहायता लागि बाल हेल्पलाइन 10-9-8 तथा बाल बालिका कोषद्वारा समन्वय केन्द्र 104 मा संपर्क गर्नुहोस्।
0: भारत बेच लेखन तथा उत्साह प्रसार कुशलता प्रतिनिधिद्वारे जानकारी दिन

0: सीधा समय के साइड में आयोजन के तालमेल से मैराथन में जानकारी दिए कुछ कर
1: सामग्री पर्किने सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।

0: usan aku sendiri dengan inahinta bintu haito si. Ori ini sahian kakam kurma sangit transko ustasa jaro tangku tukni soril tukni no tadi kamsuri wis ang selira swasti sastan mapukni birami ko sang kapani bali ko sa batsur nakarpalika ikhara ki nina khatka क्यों कामुसार इसका पाइगो सकर्मी धूसा में पाइने सुषमा माइट अर्थात सिकल को टुकाई बाट मानिस मुसा स्व खेत बाई घास तथा झाड़ी में काम करता पुना बहुला भाई को कपड़ा वा पाइंट लगाएर तथा संग भाई संग किरा भगाने स्त्री प्रयोग करना स्वास्थ्य कर्मी सुधार दिखे आएका छन् जन स्वास्थ्य अधिकृत तारा रिजाल
1: सामान्य औषधि

0: सुखाएगा और सब कुछ आप बिगाड़ के देगा था।
1: बिगाड़ा होगी भी हो सकता था कि क्या दिन में बताए
2: Thank you.

0: किसी को उनकी श्रद्धा नहीं लगा क्योंकि उन आए हुए किसी से हम बिजने कुछ उठाऊंगा नहीं करके काम में सुखवा के हुई पंखा लगा के हुई की चाहे काम में लगा के हुई की हवा से लगा के हुई हमने वो चीज करके फिर बचा सकती है।
1: एक दूसरा का जम पर सलाह ले ली अब वस्ते के काम हम लोग जैसे नाका बन जाना अपने मुझे पानी बस क्या दे तो बिजली तो अपने पिता जी की नाली काट के और पानी निकाल के तो भरी हुई नहीं और जैसे मुंह करवा के तो पड़ पाए जैसे राज्य मुझे पड़ पाए थोड़ा ठाक है तो मुझे ठहरा के धान पर से काट दे तो हमने पास से काट ले पानी बाहर खा दीता वो पानी निकल जीता फिर जाना जी तो उनके से काट के फिर सफा ले वो फिर
2: हवा हुई पानी पर हवा हुई तो कारण धनी खान जो सरकार सुधार बिक्री कर कृषि अनुसंधान परिषद का ध्यान था जस्ता मेरो इकोमर्स

0: छोटे मामले में हम लोग कैसे प्रवेश है। आजकल हम इनके आजकल एकदम पानी बरसने कर हम इनके धाम किया गया तो पानी भर के अगर पैसे पाकर नहीं है।
1: पानी से सबको लेते हैं हम उनके खलवा के पूछो हम सब बिगड़ गए। पानी जंगल धान कर नहीं काट लो तो फिर

0: गुजरात से पानी आए जाए अगर से पानी की ठंडा इतना आएगा खेतों से पानी निकालना पानी की ऊपर से घाम लगी और ऐसे पानी काटने के कारण जरा और मर जाएगा वही हमारे से पानी की खेतों से दूर दूर वो साइड लगा के बैठेगा वो हरी से हरी धान काटना धान काट के हरी से हरी हमने से ठेसर लगा के पानी की यकीन धान सुखा पड़ी वही से हम उनकी क्षति भी रहती है कम से कम 20% फिर क्षति भी रहती है फिर 20-30% हमने बचा है क्षति भी माटी मिल गई ऊपर से पानी मिल गई बुढ़ में से पूरा पानी हमसे पहले से जमीन के घोष पाएगी ऊपर से पानी घोष पाएगी वहाँ से घाम फैला लगा घाम से जब पूरा बफाई गिरा वही हमारे से हमने हरी से हरी हुई हरी से हरी उठाएगा हरी से हरी गाय मारा ठेसर लगाएगा वो नाई से भी फिर ऊपर से हमने धान रखने जब वहीं से यहाँ से उधर ऊपर से यहाँ लेके हमने बिल जमा करना का एक लिंग घर उधर एक घर में एक लिंग यहाँ लिंग कहना नाइट में हमने वैसे चीज लगाई तो फिर नाइट का धान से काटने जब मचूर से लगाई ना कहाँ सारे लिंग से पान लेना के ऊपर हमने धान काट कर धान पानी भी जमा कर दिए थे हरी से हरी गाय मारना हरी से हरी ठेसर लगाना हरी से हरी खेतों से उठाना वो हम उनके बाहर आ रहा थे हमारे पानी बचत नाइट को पढ़ाने के चक्कर में पानी के चक्कर में फिर दिया जाएंगे फिर सके वे हमारे से हरी ठेसर लगाना दिया धान पानी से बचे सके नाइट फिर दो चार दिन पाँच दिन पूरा उन्हें छोड़ पाएंगे सब करवा सके
1: Yeah.

हुआ था तब तो मैं जमा सही तो कोई मतलब जब मैं तुम्हारे पति से जब नहीं दे रही हो तब उसके लिए बात मैं आए बात को पढ़ना करूँगा मैं जमा था वो रात को के बहाने के लिए कोई मैंने हर प्रेम था कोई मैंने फोन था कोई मैंने चिकन था कोई मैंने चपरा चिकन था और एक चपरा था कि तब मेरे को मकई जब वो मिला था मैंने जमा था वो तब मैंने जमा था रात को के

ही पशु होता है, माथा होता है, औषधि गण चोकर विहारी पीवीगण और घर तथा कृष्ण ऊर्जा समेत उपलब्ध छ।

संसदीय नगरपालिका एक गांव नंबर 15 स्थित आमोद बगिया में बैठक अवस्था में वहां पर नियंत्रण में लेकर प्रहरी चौकी खिलापुर बर्गिया से खटक प्रहरी टोली को इस समय का घर में पुरानी नगर पालिका एक गांव नंबर 15 बैठना 24 वर्षीय जनरल बहादुर चौधरी और ठाकुर बाबा नगर पालिका एक हाल बुरा नगर पालिका एक गांव नंबर 15 बैठना 26 वर्षीय विजय सफरियाना नियंत्रण में लेलबा प्रहरी महाकन महाकन प्रयोग कर जगह किनार पार्किंग के खाना थलत इमाना कंपनी पे 12.7 नंबर के मोटरसाइकिल और हीरो एक्सट्रीम कंपनी 12.06.005 पर 13.78 नंबर के मोटरसाइकिल समेत बरामद करना नियंत्रण में लेकर दूसरा कानूनी प्रक्रिया अनुसार जिला

आर्थिक समाचार प्रसंग हमारा संदेश का समय बताया जाता है। हमारा संदेश सुन रहे थे पहले मुख्य मुख्य संदेश एक है ना दस्तक के बड़े छात्र पर बल अच्छी बात करे वो स्वच्छ जनता को चालीस पर

0: की सारी सच्ची कई देर इसमें रह गया था वो तरह वो जैसे वो बड़ी समझ में सारा टीवीएस किस तो टीवीएस बात करिए तो कब इधर का प्रदर्शन नहीं करेगा
1: हरे टीवीएस देखो निकालेगा

0: सरकारी कोचिंग पार्टनर प्रार्थना महल रोड के सोचिए उत्तम स्थान होगा ये
1: संस्था का पक्ष ग्राम पसंद रोड टू के पास लगातार कार्य कराई थी।

पिता, मैं उम्र का थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो। संभावित जोखिम बारे सचेता हूँ। बाल बालिका को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता को अधिकार।